से पापी भी तारे भव सागर से पार उतारे। जब जो जावे इनके द्वारे पापी से पापी भी तारे भव सागर से पार उतारे। तो इनको नी तट अरे हाँ के इनको नी तट पकड़।

दर्शन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

गोपाल भय भूरे गर्व भय सूरे अब का करे लाल। गोपाल भय भूरे गर्व भव सूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी।

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भजलो रे हरि तन से भजलो रे हरि राम नाम है जग में।

रे अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

आसाराम कहत हैं भाई।

करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन।

0: शुभकल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुभकल कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, नए नए कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ में हम प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को वो छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए, पहुंचाई जाए कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम देख भी रहे हैं। हम कार्यक्रम को जब बनाते हैं तो सारे बिंदुओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को बनाते बनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में आजीविका से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों, आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण पर बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं, लेकिन साथियों आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए जैसे आजीविका

जोड़ा जाए तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि हमने पहले शुभ कल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभ कल लीडर, तो उसमें हमने जो 5 गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केंचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो 5 विषय थे उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों, आज हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे भैरव भौजी का जो किरदार है, जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं इससे जुड़े, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना। और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बनाना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको, या तो जला देते हैं, गौमूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों, अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, भैरव भौजी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज़ में इस प्यारे से लोकगीत को सुना, पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और भैरव भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना, चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।
1: अरे लाला जी, आज तो बगल में रेडियो रखे हो और जो, लेकिन का कर रहे हो तुम?
2: अरे भौजी, कर तो तुम रही, तुम बताओ का कर रही? आज तो बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
1: अरे लाला जू, का इतने ही जा रहे थे ने, मैंने कहीं बजा रहे हुए हूँ, लेकिन तुम का कर रहे?
2: अरे भौजी, मोई ना सुनो, अब वो हुए कितनिया के आधी अधूरी जानकारी ले लो तो कितम के नीरत ना घर के ना घाट के।
1: का कह रहे लाला जू, आधी माधी कर लेते सो बही कर रहे, का कर रहे?
2: अरे भौजी, ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गए कछु भी चीज की, कछु भी काम की, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे हैं।
1: सो बास का कह रहा लाला जू, घर को पता, घर को ना घाट को?
2: अरे बाकाना दूसरी, हम जा दूसरी कह रहा है कि अब जो जो जो काम कर रहा है, जो हम वो बना रहा है, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
1: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो।
2: हाँ, सो अब हमने बात सुनी तो है ना की, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बनावे हम।
1: ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लाला जू?
2: अब बस भौजी, तनक एक संग दूसरा काम कर जा रहे थे, वो एक जने हमें बता रहे थे भी, बड़ी बता तो इन्हों नहीं तरह से रहे थे, लेकिन हाँ। हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, हमारी गलती हो गई अब।
1: अरे लाला जू, मैं जानत होंगी तुम्हें, तुम मन के तुम और लगो हो जी, अब तुम्हें काहे को बस सुनाई दे है ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो बज्जे सुन लेते होते, उनमें मन ना लगाते।
2: अरे भौजी, तुम केवे को मतलब काहे कुन में उतर तुम मोड़िया ने देख रहे हो तो?
1: मैं तो जय कह रही, तुम जो ही कर रहे हो और बामे ध्यान कम दे रहे हो, अगर कोनो जानकारी सुनना है तो ढंग ही से सुन लो।
2: अब भौजी नहीं सुन पाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बनाई ली।
1: हाओ ये राम भाई, तुम्हें तो खूब आते है वो, अब बना लो।
2: अब भाई तो कर रहे भौजी, सब तेवर बीच में आ गई।
1: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
2: अब जी सब सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो कर ही लो।
1: लाला लू तुम, तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
2: अब काय भौजी, जब काम करे तो भड़ना जाए, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
1: ऐसे काम को देख भड़ गए जैसे मन जाने का पूरी अमृत मिट्टी तुम्हारी बना रहे हूँ।
2: अरे भौजी, जब अपन पूरी तरह से, जब पूरी तरह मिट्टी में मिल के काम करें तो अच्छी तरह से बने, हमने सुनो कि कोनो चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छा हो जाता।
1: का कह रहे लाला जू, दूध में मिला मिला के पियो सो अच्छो हो जात?
2: हाँ, कोनो काम अगर अपन अच्छा घुल मिल के करें भाई मिलोच से, तो हमने की तनक भड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहे है कि उम्मे भिड़ जाओ तो मुझे देखता है क्या, मैं और मुँह पोत दू मैं तुम्हारा, तो नेक और अच्छे लगो सुगाटा जैसी।
2: तो फिर भौजी दिखाए कैसे सुगाटा से तुम्हें बन जे?
1: का कह रहे लाला जू, चाटा खल जे, मैं देखा तुम्हें ये देख हो गई तुम्हारी हमें।
2: अरे भौजी, तेन तो कह रहे की सुगाटा से बन जे, तो मैंने कही सुगाटा से बन जे से, तो दिखाए कैसे चाटा को मार रहा तुम्हें?
1: अच्छा तो मैं देख तेज भूल करे तुम तो वही की वही घुसरू घुसरू कर ले।
2: अब तो सुनाते है इतनी तेज, कहते है मैं कौन बिहारी हूँ?
1: कहा कह रहे लाला जू?
2: कछु नहीं कछु नहीं, जब रहे ऐसे कह रहे थे कि अब बता दो करूँ काम, है समझ में नहीं आ रही।
1: अरे लाला जू, तुम चलो मैं ही बताए देता हूँ, मुझे तो मालूम है, मैंने खुद सुनो तो।
2: अब लेकिन तू भौजी जाने तो सज के तो ठाड़ी है।
1: कहा कह रहे लाला जू, तू तो जाने है?
2: हाँ, उतने तो ठाड़ी सजी
1: तो, अब सजी ठाड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले, अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी, तो मैंने की अब तुम्हें बताए दे तू।
2: अरे मैं सब जाना जा, आई हूँ जी मुही ने सज बज के, तो बातें मारे झूठी झूठी।
1: कहा कह रहे लाला जू, झूठी कह रही?
2: अरे भाजी कछु नहीं, अब बता देते हैं तो।
1: हाँ तो मैं बताए दे थूंगी, अब मुझे जाने होते, अब मैं टेम हो रहा हूँ वो तो। देखो अमृत मिट्टी तुम देखो जो बनाते हैं लही है, लेकिन की के लाने तीन चीजें, जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे, लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
2: अच्छा, अमृत जल बनाने?
1: हाँ, यानी कि अमृत पानी बनाने, वो कैसे बना थे?
2: हाँ,
1: वो जो गैया को गोबर हो बाय ले लो,
3: ठीक है,
1: और का ले लो गोबर ले लो है, और एक सड़ो गड़ो फल हो तो अपनो, चाहे केला हो चाहे वो अपन जो मतलब नहीं खा रहे सीधी बात।
2: अच्छा
1: है, वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो, कह देना खिलाने तीन दिन खिलाने, ठीक है लाला जू? आ रही समझ में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, नोनी तरह से यहाँ जा रही।
1: कहा कह रहा लाला जू, ने कम तरीका से आ रही?
2: अरे बात पूरी तरीका से आ रही।
1: हाँ, भाई तो मैं कह रही सुबह।

0: अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना और लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि है अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है, जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल रहते हैं तो जंगल के पौधे बिना बारिश और
0: बिना जलवायु क्या रहते हैं?
1: बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली
0: हरियाली
1: रहते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है कि, और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें को लाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है, जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है,
0: खरपतवार
1: तो
0: मतलब
1: इसी
0: आप
1: से तैयार होता है। देखिए ये तो अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं करते हो, तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है, तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो

0: चटनी बनाकर किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी
1: जी
0: जस्ट बताया
1: जी
0: कि बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त
1: बिल्कुल जी
0: जगह है और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण
1: जी
0: क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको बार बार पानी किसी भी फसल में बार बार पानी देने की
1: यानी
0: आवश्यकता पड़ती
1: आवश्यकता
0: है।
1: पड़ती
0: तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं,
1: जी
0: जैसा
1: जी
0: मैंने अभी रामपाल भाई को भी बताया और
1: जी
0: अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद आप कह भी सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि भूमि
1: जी
0: या मिट्टी की गुणवत्ता
1: उर्वरा
0: उर्वरा शक्ति
1: शक्ति
0: वो
1: बढ़ाने
0: काफी
1: के
0: बढ़
1: लिए
0: जाती है
1: जी
0: और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे
1: अच्छा
0: आपको सिंचाई
1: जी
0: देर से
1: जी कम देनी पड़ती
0: कम
1: है
0: देनी पड़ती है। अब जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो आपके ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई
1: जी
0: जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका
1: जी
0: प्रयोग नहीं करते हैं,
1: जी
0: तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती
1: जी
0: के लिए, तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहां पर खेती नहीं करते हैं और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं। या
1: अच्छा
0: अगर आपका खेत खाली है, कोई लगता है कि बंजर है या जहाँ पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले
1: लगा
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं। और
0: क्या और ये तो और भी अच्छी बात है कि
1: बिल्कुल
0: किचन गार्डन क्योंकि घर के नजदीक ही होता है,
1: जी
0: तो एक अमृत मिट्टी का प्रयोग करके अगर हम किचन गार्डन करते हैं तो
1: जी
0: जो जो भी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि उसका जो भी काफी अच्छी हो जाती है
1: जी
0: और गुणवत्ता भी काफी जो फसल की है वो गुणवत्ता बढ़ जाती है,
1: अच्छा
0: तो किचन गार्डन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम सुपकल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी, और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है, तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पर अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही हैं, ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही हैं। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अब करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। और जो हम अपने खेती के साथ, जो धरती के साथ, जो मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। साथियों, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता साथियों के मन में बहुत सारे ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमसे पूछना चाहते होंगे और साथ साथ में बताना भी चाहते हैं, तो आप हमें यदि फोन करके बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9219207749। फिर श्रोताओं, आप हमें चिट्ठी के माध्यम से भी बता सकते हैं, जो पुराने हम चिट्ठी हमारे श्रोता भेजते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, हम कार्यक्रम में उसको पढ़ते थे, जोड़ते थे, जो सुझाव रहते थे उस पर हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है, जैसे कि हम अभी पठा में गए।

0: थे, और हमारे जो विजय जी हैं काफी नियमित श्रोता हैं, और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहें तो जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको, ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीकेश जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं, और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम सुबह कल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। अब साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम सुबह कल से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: शुभ कल, बदलती जलवायु के लिए तैयार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास है उसके लिए हम कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए अगर आपने सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया तो।
1: क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। यदि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है उसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
0: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
1: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस्य जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
0: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
1: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व

0: नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं, दूसरा गुण आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
1: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
0: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा, और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपकी आत्मविश्वास को जगाएगा। आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
1: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है, या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं, या आप में किसी का भय है, तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
0: दोस्तों, और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं, इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं, व्यक्तित्व विकास के गुण होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
1: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत।

0: बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप, इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा प्रतिभा योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं, इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखें, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के हम बोलते जाते हैं हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें, और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने, समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं और जी हाँ अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है। लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा, बुराई, कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं वही व्यक्ति माफी मांगता है, और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे, जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है, यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
0: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
1: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कार में योग्यता, ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रित रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है, सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए, लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है, यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन

0: एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
1: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
0: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सबका उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
0: 9425147726।
1: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है, उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सके।
0: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
1: तब तक के लिए नमस्कार।
0: और चलते चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे ही कार्यक्रम को समय भाव है, सो हम लेके आ गए आपके लाने जो कार्यक्रम खेत खलियान। खेत खलियान कार्यक्रम में आज अपन बात करें टमाटर की खेती की। टमाटर की ये किस्में देंगी 1 एकड़ में 500 क्विंटल की पैदावार, जबरदस्त मुनाफा। दोस्तों, नवम्बर में तैयार करें नर्सरी और पाए भरपूर उत्पादन। जाने कौन सी हैं ये किस्में और इसकी विशेषताएं और लाभ। सो साथियों, टमाटर की उन्नत किस्में जानबे से पहले अपन सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। ये गीत के बाद फिर अपन टमाटर की उन्नत किस्मन की बात करें और जाने के जी किस्में हमें कितनी पैदावार दे सकती हैं। सो आओ सुन लेते हैं बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

0: दारी उतरी कर धनिया है भरवे गई पनिया।
1: गई थी कहां धनिया डारी कितने कर धनिया। देखो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। दोस्तों आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। टमाटर का प्रयोग एकल व अन्य सब्जियों का जायका बढ़ाने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक बणक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है, इस लिहाजे से टमाटर की खेती लाभ का सौदा हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में और इसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। साथियों टमाटर की देसी किस्में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्में पूसा हाइब्रिड 1,

पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। भारत में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के बीच टमाटर की अर्का रक्षक किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी वजह से ये है कि एक तरफ तो इस किस्म से बम्फर पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है। साथ ही अर्का रक्षक का फल काफी आकर्षक और बाजार की मांग के अनुसार होता है, इसलिए किसानों का रुझान इस किस्म की ओर बढ़ रहा है। क्या है अर्का रक्षक किस्म की विशेषता? दोस्तों, यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की ओर से वर्ष 2010 में इजाद की गई थी। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक और सब्जी फसल डिवीजन के प्रमुख एटी सदाशिव का कहना है कि यह भारत की पहली ऐसी किस्म है जो त्रिगुण रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोड़क विषाणु जीवाणु झुलसा और अगेती अंगमारी जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। वहीं इसके फल का आकार गोल बड़े गहरे लाल और ठोस होता है। वहीं फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है जो बाजार की मांग के अनुकूल है। एक एकड़ में होती है 500 क्विंटल पैदावार। डॉक्टर सदाशिव के अनुसार टमाटर की इस किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में कम लागत आती है जबकि मुनाफा जबरदस्त होता है। इसकी फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में यह टमाटर की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाली है। इससे प्रति हेक्टेयर 190 टन का उत्पादन किया जा सकता है। वहीं प्रति एकड़ 45 से 50 टन का उत्पादन होता है। प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्पादन देखें तो एक एकड़ में टमाटर की बुआई करने पर 500 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। वहीं अन्य किस्मों से काफी कम पैदावार प्राप्त होती है। टमाटर की बुआई का सही समय। दोस्तों, जनवरी में टमाटर के पौधे की रोपाई के लिए किसान नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधे की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें। पौधे की बुआई अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में करें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल माह में नर्सरी तैयार करें। पौधे की बुआई अप्रैल और मई माह में करें। टमाटर की पौध कैसे तैयार करें? खेत में रोपने से पहले टमाटर के पौध नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके लिए नर्सरी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाना चाहिए। इससे नर्सरी में पानी नहीं ठहरता है। वहीं निराई गुड़ाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई से बोना चाहिए। टमाटर के बीजों की बुआई करने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज की नर्सरी में बुआई से पहले 2 ग्राम केंटान से उपचारित करना चाहिए। वहीं खेत में 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्रान 3 जी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। टमाटर के पौधे जब 5 सप्ताह बाद 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तब इन्हें खेत में बोना चाहिए। यदि आप एक एकड़ में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए टमाटर के 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। टमाटर की फसल में ध्यान रखने वाली बातें। दोस्तों, टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। वैसे टमाटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। हल्की मिट्टी में भी टमाटर की खेती अच्छी होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन करने की क्षमता होती है। विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचने के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कार्बिजेंडा से उपचारित करें। यदि आपने टमाटर की फसल गर्मियों के दिनों में लगाई है तो 6 से 7 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। यदि आप सर्दियों में

की फसल ले रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करना पर्याप्त है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। टमाटर की खेती का तरीका, खेत को 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी तरह जुताई करें और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दें। इसके बाद टमाटर की पौध को 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए रोपाई करें। खाद एवं उर्वरक, उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव ना हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए। 1/3 नत्रजन, स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में बिखेर कर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। शेष नत्रजन को बराबर भागों में बांटकर प्रतिरोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद ऊपरी बेसन के रूप में डालकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जब फूल और फल आने शुरू हो जाएं, उस स्थिति में 0 से 5% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन सांद्रता पर काफी ध्यान देना चाहिए। अधिक सांद्र होने पर छिड़काव से फलों की पूरी बर्बादी होने की संभावना रहती है। वहीं हल्की संरचना वाली मृदाओं में फल फटने की संभावनाएं रहती हैं। प्रतिरोपण के समय 20 से 25 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0 से 3% बोरेक्स का घोल फल आने पर 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। पाला व लू से टमाटर की फसल की सुरक्षा। टमाटर की पौध के प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जा सकती है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला व गर्मियों में लू से बचाना बेहद जरूरी होता है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू से बचाना केवल 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। इससे जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू का प्रकोप कम होगा, जिससे टमाटर की फसल को सुरक्षा मिलेगी और उत्पादन पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें खरपतवार नियंत्रण की। कई खेतों में खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। यदि आपके खेत में भी ऐसी समस्या है तो इसके नियंत्रण के लिए लासो 2 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रतिरोपण से पूर्व डालना चाहिए। वहीं रोपण के 4 से 5 दिन बाद स्टाम्प 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सो देखो दोस्तों, जा अपन ने आज बात करी है टमाटर की उन्नत खेती की। सो दोस्तों, अब एक क्रम में अपन और कह रहे हैं कि माता दिन भैया बहुत देर से टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं, मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं दे रहे। सो आओ दोस्तों, मनोरंजन के लाने अपन सुनत ही बढ़िया से गीत खोल लेते हैं, गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुन लेते हैं गीत को। जी गीत को गा रहे हैं रामकिशोर प्रजापति जी।

लर परी तुमैया तुमा से पंचन में देत उरानो। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। गीत को गा रहे थे रामकिशोर प्रजापति जी। अब दोस्तों रामकिशोर प्रजापति भैया जी के गीत के बाद हम आपको बता देंगे कि आज के कार्यक्रम खेत खलियान को इतना ही समापन होबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में एक बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक गायक कलाकार से भी बात करते हैं और कछु विधा के अनुसार अपन गीतन को भी सुनते हैं। तो दोस्तों, ई में अपन आज पहला तो मिले भैया बाबूलाल कुशवाहा जी से और उनसे जाने के उनने गावो बजावो कैसे सीखो है, काका विधान जी गाऊ थे। और दोस्तों, एक के संगे संगे देखो अपने जो भारतीय परंपरा में नवदुर्गन को त्यौहार मानो जाते, वो त्यौहार भी अपनो आ रहो है, बिल्कुल नियर आगो है। तो दोस्तों, अपन को त्यौहार में भी गाऊ बजाऊ थे, तो ऊ त्यौहार में जो देवी गीत अपन गाऊ थे बाद देवी विधा को आऊ थे, तो ऊ देवी विधा के गीत भी अपन आज ही कार्यक्रम में सुने और भैया बाबूलाल से भी उनकी जुबानी को सुने। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। लेकिन दोस्तों, बाबूलाल जी से मिलवे से पहले अपन सुनत हैं एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद आप और लो और हम सो लें। तो दोस्तों, आप सुनत हैं सबसे पहला तो एक गीत को और गीत को आनंद लेते हैं।

0: निलारी
1: बारे प्यारे
0: नांग काली क्या करे में डारे डूड़ा बैल सवारी तुम्हारी महिमा बड़ी निरा

তোমার ভারী ভগবান দাস।

0: बोल दोस्तों, मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो दोस्तों, कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है और गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों, ई गीत को गा रहे थे भैया बाबूलाल कुशवाहा जी। तो साथियों, बाबूलाल कुशवाहा जी के गीत के बाद अब बाबूलाल जी से बात भी करते हैं कि भाई कैसे गावो बजावो इनने सीखो है और कैसे कैसे इनने काका गाओ है। तो दोस्तों, बाबूलाल कुशवाहा जी से आओ अपन मिलते हैं इस छोटे से संदेश के बाद। अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम बताओ।
1: बाबूलाल कुशवाहा।
0: बाबूलाल कुशवाहा कहाँ से हैं अपन?
1: बासवान
0: चताव से बाबूलाल जी। अच्छा बाबूलाल जी, आप जा बताओ कि आपने जो गावो कहाँ से सीखो? तो
1: हमने हमारे बूढ़े पुराने है थे,
0: हाँ
1: पहले के तो होता थे, पहले से
0: भजन जी होता थे आपके थे। अच्छा, तो आपने उन्हें से सीख लो जो
1: पहले बैठा था डाटा।

0: हाँ दूर दूर
1: कई बार सुना हो पर नहीं।
0: हाँ
1: फिर उनने की कहा तुम्हें सीख नहीं हमने। हाँ
0: हाँ
1: सो उनने फिर बजवाओ
0: हाँ
1: गुबुआओ।
0: अच्छा तो आपको जो पता है कि आप जब कितने साल की हुई हो जब आपने सीखो है जो?
1: जब हुए हम 15-16 साल की।
0: 15-16 साल की।
1: हाँ
0: तो आपको अच्छी लय थी मतलब गावे की?
1: हाँ लय थी।
0: तो जैसे आपने 15-16 साल के हते हो और आप जैसे जो ये होते भजन वजन तो आप उनकी करके उनके बैठन लगाते
1: हो
0: तो जो भजन का डेली होते क्या कम गुम होते ऐसे कैसे
1: पहले तो
0: होते?
1: जैसे ब्याह माई करेंगे आदमी ने
0: हाँ
1: वो बैठ गए सब रोज ही होते पहले तो।
0: अच्छा
1: हाँ अगर और रिश्तेदार आ गए तो कही आज वो आज होने होने हैं।
0: अच्छा
1: सुबह अच्छी ले लगी।
0: हाँ फिर तुम्हें ले बढ़त गई। फिर तुमने सबसे पहला कहा गाओ तो कछु ऐसी आप याद हो बे बादन की जब आपने सबसे पहला शुरुआत करी थी गावे की तो का चीज गाई
1: हमने गाओ कछु नहीं।
0: हाँ
1: वो तो जैसे आपने गाओ
0: हाँ सो हमने उठो संग लवा लो।
1: आपने कहा कि हम तुमको बोलो।
0: हाँ
1: ऐसे ऐसे सीख गए।
0: अच्छा मतलब गावे वाले ने उठा दो फिर नहीं आप तुम साइड में बोलो।
1: हाँ पहले छेड़ बसी को एक दूसरे से।
0: हाँ
1: फिर उन्हें सकाओ के जाप गाने तो नहीं आओ।
0: हाँ
1: सुनने के सुनाओ।
0: हाँ
1: फिर ऐसे ऐसे गाओ
0: गाओ सीख गए
1: सीख गया सब चाहे थे पार्टियां में चले जा।
0: अच्छा अच्छी बात है। देखो तो आपको कितनी जब लगन से हो सब
1: हो लगन से
0: है कि जब जिगर जी आदमी
1: हमें देख लगन है कि ब्याह है पे हम एक साल घर ही नहीं रहे।
0: अच्छा मतलब ब्याह आपको होगा तो?
1: हाँ वो घर नहीं आए एक साल। हम
0: एक साल आप घर नहीं आए तो कहाँ गए थे आप?
1: मारे जो सिखाओ तो उनके संग रहा तो ले जाए।
0: अच्छा आपको घर से कोई मतलब
1: हाँ,
0: नहीं ले बताओ। लेकिन अब आजकल के लड़का नहीं है ऐसे बेकच्चा हमें कुछ सिखाया चाहना हमें कछु नहीं सीख रहे हमें तो घर रहना।
1: वो नहीं कहते रोटी खाई हमने।
0: अच्छा
1: वो तो ही रहे।
0: अच्छा को गाओ तो आपके तो जो ऐसे हते किन के संग सीखते
1: चाचा ये हते परिवार के।
0: हाँ
1: तेरा लाल कुशवाहा गुजर गए थे अब।
0: अच्छा
1: वे हाँ गुरु की हती
0: तो भी गाओ थे सारंगी बजाते
1: हो सारंगी
0: तो भी गाते हो सारंगी बजाते हो तुम तो फिर उन्हीं के संगे लग गए
1: बस
0: घर से कोई मतलब नहीं। अच्छा शादी क्या साल की हते जब आपकी हो गई थी?
1: शादी हुई थी भाई 18 साल में।
0: 18 साल में तो देखो आपको जब लगन लगी तो लगन में आपने ना तो शादी देखी ना घर देखो ना कछु आपको तो अपनों मंजिल दिखा रही थी कि हमें जो काम करने वो करने
1: हमें सीखने सीखने गाओ बजाओ
0: है। तो देखो एक लगन हो जी
1: अभी तो अपनों साजबाज।
0: हाँ
1: बूढ़े पानों का रखे हैं अपनों।
0: अच्छा तो इस साजबाज में काका हो काका है बजावे बाप
1: इसमें सारंगी है खंजड़ी है जे झाने हैं।
0: अच्छा
1: झीका है
0: झीका है ये चीजें बजाते ही हैं आपके। तो आप देखो भाई जो पुराने चलन के ये बाजे हैं जे अबे भी आप संभाल के रखे हैं अच्छी तरीके से।
1: अगर फूट जाए तो हम उन्हें मर भी ले
0: का ऊपर मड़वा भी जाते हैं और को मड़ पाते ना क्या नहीं जैसे खुद ही मड़ नहीं आती ये तो
1: नहीं हम खुद ही सीखा उन्हें सब सिखा रहा हमें।
0: अच्छा
1: हाँ गुरु जी ने
0: हाँ
1: गावो बजावो और बनावो सब
0: कि अगर जब फूट जाए तो यही से मर लो
1: मर लो।
0: अच्छा काय से मरता अगर फूट जाएगा तो
1: जैसे जे बकरा की खाल है बकज्जा की।
0: हाँ
1: वो जाता जाना बढ़िया गोवा मिल जाए।
0: अच्छा
1: गोवा की वह बढ़िया बोला।
0: हाँ
1: वो इतना की दाल बांट के।
0: अच्छा
1: वो उसे घेरे से लगा दो।
0: हाँ
1: कड़ाई बना के जो जो जाएगी रस्सी की।
0: हाँ
1: वो दो तीन आदमी टीरे को चढ़वा दो डांट के।
0: अच्छा
1: दो तरह चढ़िया दी
0: ले साहब तो इको फेविकॉल भी नहीं चाहे।
1: हाँ हाँ फेविकॉल तो फिर है वो इधर के सामने।
0: अच्छा जयते ज्यादा काम करत। चलो भैया तो देखो आपने कितनी अच्छी बात अपने साथी में बताई। तो जब आपने कहो के सीखो जो सब काम तो जब से आप तो उन्हीं के संगे लगे रहे
1: हो लगाई जाए बिल्कुल
0: है
1: तेरा भाई काम करो घर करो।
0: हाँ।
1: रात को उन्हीं के संगे कर गए।
0: अच्छा घर से कोई मतलब
1: हाँ।
0: नहीं रहो। चलो भैया जी तो देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई। बस जी आदमी को जी की लगन लग जाए वो आदमी को काम करके होगा
1: रुकता ही है नन्ना गए लो अभी।
0: अच्छा किए लो आवे गए
1: हमारे घर अंजन
0: बहु को।
1: हाँ सो हमारे भज्जी बोले के काहे तो आ तो जाना नहीं भजन में।
0: हाँ आज जब घर आ गई
1: कहते कहते कहते तो ये नहीं जाने।
0: हाँ
1: हमने जाने तो है।
0: हाँ
1: ये बोले मां नहीं जाने।
0: हाँ
1: और अपना लगाओ सावन।
0: हाँ
1: और ना लवाई के नहीं आ पाओ हमारे संग भाग गए
0: ले साहब
1: 3 दिन में लौटी थी।
0: ओहो तो ये तो जब की बात है जब आपको जब लगन लगी थी। लेकिन अब के लड़का भाई आजकल नहीं बेकत के हमें तो नन्ना को इंतजार है कब आ रहे। चलो भैया बाबूलाल जी आपने इतनी अच्छी बातचीत करी अपने साथियों से ही खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ देखो साथियों ये तो आते भैया बाबूलाल जी और बाबूलाल जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी है कि हमने कैसे गावो बजावो सीखो है कितनी मुश्किल से सीख पाओ और काका गाऊ थे। और दोस्तों एक के संगे अगर आप और भी गाऊ थे बजाऊ थे और अपनी बात को हम तक रखवो चाह रहे रेडियो से बतावो चाह रहे तो आप हमसे जरूर

संपर्क कर सकत। दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है इस प्रकार से 0 75 25 84 81 11। साथियों जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकत के माता दिन भैया हम जो कार्यक्रम गाउत हैं जो देते हैं और जा विधाकों भी गाउत हैं। तो दोस्तों एक विधाकों अपन उजागर करवे के लाने और साथियों तक पहुँचावे के लाने और आदमी ये सुन के सीख सकें ई के लाने आप हमसे जरूर संपर्क करें कि आप कैसे नजा आपने सीखी है और काका आप गाउत हैं। तो दोस्तों हमने आपको नंबर बताई दो और ई नंबर पे आप फोन लगा के हमसे सीधी बात कर सकत। और दोस्तों अब एक क्रम में अपन देखो कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ भाई कार्यक्रम में सुना थे कछु गीतन को और गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

देखो साथियों, जो कितना बढ़िया देवी गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद रहो है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया भगवान दास पिपरिया वाले। तो साथियों भगवान दास जी के ही देवी गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। तो भाई कार्यक्रम में और सुनते हैं एक और बढ़िया से गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में। तो आओ दोस्तों सुनते हैं ये प्यारे से गीत को।

बिल्कुल साथियों, तुम बिन काज बने ना देव दर्शन माँ विराज मोरे अंगना। देखो दोस्तों, कितना प्यारा जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं अपन एक और बढ़िया से देवी गीत को और वो गीत को आनंद लेते हैं। तो साथियों आप ऐसे सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को अपने दोस्त माता दीन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, सब पे कृपा राखियो हो माँ। देखो दोस्तों, कितना प्यारो जो देवी गीत अपन सब जन ने सुनो है और ई गीत को आनंद लो है। और दोस्तों, ये गीत को गा रहे थे भैया हरी राम जी। तो साथियों, अब हरी राम जी के ही गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गया है। तो अपने दोस्त को दें ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

कब से? जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और काय ना।
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कहना कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते।

0: दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
1: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
0: लेकिन आजकल ये तो भूल लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: जवाब सत्य ली कहना है, हमने इतना प्यार करो मालूम कितना कल तक।

जब पूछना कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो कब बोले हद से हद से।

0: नमस्कार रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे फरमाइशी कार्यक्रम का समय हो रहा है, सो फरमाइशी कार्यक्रम सुनते हैं। लेकिन इससे पहले हम अपने श्रोता साथी हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: राम राम भैया।
0: राम भाई साहब, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल तो बढ़िया है, मस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है, बिंदास है, बगीचे में बैठे हैं, रेडियो बुंदेलखंड का भरपूर मजा ले रहे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है प्रोग्राम हमारे?
1: प्रोग्राम तो सर जी बढ़िया है। और हमारी बहन कार्यक्रम में क्यों नहीं आ रही है?
0: बहन अभी वो छुट्टी पे चल रही है।
1: जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: लिखने वाले ने लिख डाले तसव्वुर

0: लगी।
1: लिखने वाले ने लिख डाले।
0: जी सर,
1: बहुत बढ़िया, आपने गीत को चुना है, आइए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत सर।
0: हमारे मित्र हैं सर जी,
1: हाँ जी,
0: हमारे मित्र हैं राम शरण विश्वकर्मा जी हैं, छोटे यादव जी हैं, अनूप कुमार राजपूत जी हैं, बलवान सिंह यादव जी हैं, जो आपका कार्यक्रम इस समय दिल से सुन रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का स्नेह और प्यार इस कार्यक्रम को देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: राम राम भैया।
1: राम, सुनो आप अपनी पसंद को जो गीत।
0: राम राम।
2: सारे गामा।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं
1: जी? प्रिया नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं सर? जी भाई साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है।
1: अच्छा,
0: हाँ अब सही आ रही है।
1: जी जी जी जी।
0: और क्या हाल चाल है योगेश भैया?
1: बढ़िया भैया, अभी तो घर में है।
0: घर में हो?
1: हाँ जी।
0: पानी वानी गिर रहा कि नहीं?
1: नहीं गिर रहा भैया, बहुत धूप उमस गर्मी है।
0: बहुत ज्यादा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा उमस गर्मी पड़ रही है।
1: जी
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: धर्मात्मा से सुनवा देंगे, तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: ठीक है, आपको सुनवा रहा है आपके पसंद को जो गीत भाई साहब।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, सारे नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई साहब?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और मनीष भाई बताना चाहता हूँ कि मथुरा वृंदावन में आकाश में बादल छाए हुए हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बारिश भी हुई थी। मौसम तो अच्छा हो गया है लेकिन घर के अंदर थोड़ी सी उमस भरी गर्मी है।
0: यहाँ पे 7-8 दिन से बरसात भी नहीं हुई है, उमस पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है। वो यहाँ की बारिश मथुरा में पहुँच गई है ऐसा लगता है।
1: जी, ऐसा लगता है कि उधर की बुंदेलखंड की जो बरसात है ना, अब इधर जो कल रही है, अभी शायद देखिए कितना बारिश होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन देखिए कब तक ये बादल रहते हैं और कितनी वर्षा करते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत सुनोगे आज?
1: मानवर में आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति यूनिवर्सिटी मथुरा से आए मनीष भैया से वार्तालाप कर रहा हूँ बुंदेलखंड और शाहपुर। और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जान की कसम और गीत के बोल है बरसात हो रही है बरसात होने दे। बरसात हो रही है तुम्हारे यहाँ, चलो ये गीत सुन लिया जाए, बारिश का महीना है और बरसात हो रही है तो और भी बरसात हो जाने दे।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत सर।
1: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सारे नमस्कार।

0: नमारा प्यारा नमस्कार सर जी को। राजेंद्र
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं श्रीमान जी?
0: गंगवार कसर पेड़िया तहसील नवाबगंज उनका बरेली उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं सर जी।
1: क्या बात है राजेंद्र जी, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ बरेली से भी हमारे श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आप शायद पहली बार जुड़े हैं।
0: हाँ जी सर, आपसे पहली बार, और रेडियो भी हम सुन रहे लगभग अभी 1-2 महीने हुए हैं, लेकिन कॉल लगाते रहते लगता नहीं, लेकिन आज लग गया सर जी।
1: क्या बात है, कैसा लग रहा है आपको?
0: सर जी बड़ा अच्छा लग रहा है, जहाँ अगर पहली कॉल कहीं जुड़े तो अच्छा लगता है सर जी।
1: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज फरमाइशी कार्यक्रम में?
0: हाँ जी, गीत सुना दीजिएगा। हमें मूवी का नाम रहेगा, क्या कहते हैं, बोल रहे अभी उसको, वक्त
1: सोच लीजिए सर।
0: प्यार किसी से होता है।
1: अच्छा, जब प्यार किसी से होता है, यही गाना सुनना है?
0: नहीं, गाने के बोल है, चल प्यार करेगी ना जी ना जी। हाँ जी
1: चल प्यार करेगी ना जी ना जी।
0: हाँ जी, यही सॉन्ग सुनना है सर जी, तो दोस्तों के नाम सावन करेंगे।
1: स्वागत है सर।
0: हाँ जी, जैसे गंगाधर सावंकर जी है, भगवान सिंह पंवार जी है, सोनू जी है, और हमारे लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, और प्रेम सिंह सोढ़िया जी हैं, और जितने भी लाइव शो का सुनना है सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा, साथ में आपको भी सर जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे पहले थोड़ा बरेली के बारे में बता दीजिए सर, कैसा
0: हाँ
1: सीन
0: जी,
1: है आपका,
0: बरेली
1: कैसा सीन है?
0: बरेली में, हेलो,
1: हाँ आवाज आ रही है।
0: आ रही है सर जी। अभी तो बरेली में तो खैर अभी हाल चाल ठीक है, फिलहाल गर्मी उमस बड़ी ज्यादा पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है सर जी।
1: अच्छा, बारिश वहां बिल्कुल ही नहीं हुई?
0: ना हुई तो है सर जी, लेकिन जो चाय तो नहीं हुई है, हल्की बारिश हुई है। हाँ
1: चलिए सुनते हैं
0: जी
1: आपके
0: ठीक
1: पसंद का ये गीत सर।
0: है सर जी,
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: अपना बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? क्या बात है, नमस्कार, कैसे हैं सर आप?
1: बस बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और बरसात कैसी हो रही है सिरोंज में?
1: बारिश हो रही है तो आपके घर में हो रही है?
0: नहीं, यहाँ पे नहीं हो रही है सर। आपके यहाँ हो रही है सिरोंज में कि नहीं?
1: अरे बारिश का तो इंतजार है, फसलों के लिए पानी लगना बहुत जरूरी है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, कम से कम 7-10 दिन हो गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अभी नहीं हो रही है।
1: जी जी
0: बताइए, कौन सा गीत सुनोगे?
1: हाँ, फिल्म है सनम तेरी कसम, सैफ अली खान वाली है, इसमें से कोई सा भी सुना देना आप।
0: जान तेरी कसम,
1: सनम तेरी कसम,
0: सनम तेरी कसम।
1: जी
0: और सब बढ़िया?
1: हाँ सब ठीक ठाक, सब सब मंगल है।
0: मंगल है तो बढ़िया है। सुनो आपके पसंद का ये गीत।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है सर, नमस्कार।
1: नहीं हो रही बारिश।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते भाई।
0: नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है भैया?
1: हर खुशी कभी दिल के करीब नहीं होते,
0: क्या बात है।
1: जिंदगी कभी गमों से दूर नहीं होते।
0: वाह वाह,
1: आप हमारी दोस्ती को यूं ही संजो कर रखना,
0: क्या बात है,
1: क्योंकि मनीष भैया जैसी दोस्ती और किसी को नसीब नहीं होती।
0: सुंदर जी, चलो इस काबिल समझा तो है भाई मेरे। बहुत बढ़िया, बताओ कौन सा गीत सुनो आज?
1: आप सुनो ये सर जी, सायराना सी है जिंदगी की खता, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए।
0: सायराना सी है जिंदगी,
1: सायराना सी है जिंदगी की खता, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए।
0: क्या बात है, कौन सी फिल्म का है?
1: कभी फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा सर, गाना अचानक में कॉल लगाने से याद आ गया।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: सायराना जिंदगी की फजा।
1: सर सायराना सी है जिंदगी की कथा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए।
0: अच्छा चलिए सुनवाते हैं भाई साहब। और बढ़िया है सब?
1: और बढ़िया सर जी, बैठे बैठे आपका कार्यक्रम आना ले रहे हैं बुंदेलखंड का।
0: ऐसी बात है
1: जी सर, बिल्कुल बस। रेडियो से जुड़ा है सर, आपकी आवाज से मीठी मीठी आवाज से बस प्रसारण सुनता है, और क्या दिन में आना तो कॉल कर लीजिए।
0: सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं।
1: और इस दिन में दोस्तों को रेडी कर डालूंगा जी,
0: स्वागत है
1: सर। पता होगा आपको और हमारे मित्र है सर जी, मुर्गन कर जी, लोगों ने करवा जी, आपका नाम पढ़ते जी, नारायण प्रताप जी, सत्येंद्र सेंसोदेव जी है, शाहरुख लोहन साधी जी, राजेंद्र कुमार जी का हमारे कॉल लगा था सर, उनको भी डेडिकेट ड्राइवर टेक्टर नगरवाल जी सर, पराशर सिंह सभी दोस्तों का डेडिकेट सर कर रहे हैं सर ये गीत।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, सुनिए आपके पसंद का ये गीत
1: जी। थैंक यू सर,
0: थैंक यू।

0: फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी बोलिए भैया जी। राधे राधे।
0: राधे राधे भैया। राधे राधे। को बोल रहे हैं अपन? और का हाल चाल है भाई साहब? पानी वानी नहीं गिरा रहे तुम?
1: अब हम का कहे, हमको भगवान है देखे अंदर भगवान। अब सबने होना ही गाय
0: कहो कछु।
1: अब देखो बता तो है पानिया एक सुको ऐसे नहीं चाहते
0: का का बाओ।
1: मूंगफली है वो भी अपनी तो मूंगफली है, तिली है और मूंग है, उड़दा है, बस यही भाई।
0: अच्छा बताओ कौन सा गीत सुनो आज?
1: आज वो सुना दो, सावन के झूलो ने मुझको बुलाया।
0: सावन के झूलो ने मुझको बुलाया। सावन लग गया हो?
1: लगाई जा एक 15 जाल रह गई।
0: चलो भैया सावन लग गया, सावन के गीत सुनो फिर।
1: और बढ़िया सर वो
0: बढ़िया है वो।
1: चलो ठीक है।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ये आम का पेड़ तुम्हारी मम्मी ने अपने हाथों से लगाया था।
1: हाथों से? मैंने आम तोड़े।
2: मैं इसको काट के ले आती हूँ, नहीं तो सब कपड़े गंदे हो जाएंगे।
1: जब आपने हाथों से सीड डाला तो खाना भी तो हाथों से ही चाहिए ना।
3: जो दाग बचपन को खुल के जीने दे वो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं।
4: Motivation 100%. Why does she remain 70%?
5: Lack of nutrients. Your daily diet gives you only up to 70% vitamins and minerals. For the rest, new Supradin daily. It has 5 times zinc and 12 essential vitamins, meaning more energy and immunity.
4: One Supradin daily with food.

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। तो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना समापन होवे को समय हो गए है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।